0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
3: 13 सप्टेम्बर रविवार
2: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
9: On a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर?
2: फाइनल आंसर।
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
8: ऑन अ राइड।

मेरी पीपल, अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट. अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड. क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: Of course, मेरी बेटी, she is damn smart.
1: पक्का, final answer.
2: Final answer.
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो. मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट. अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए.
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
4: क्लब मिर्ची।

और म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची विद ओयोंदिका एंड

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. अब बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

हेलो पार्टी पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉराइजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंधिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची। वीकेंड ऑफिशियली ऑन है। बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है। कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग, और हम भी टेक्निकली यंग ही है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर?
2: फाइनल आंसर।
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो
3: on a ride.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशन, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
3: लेडीज एंड जेंटलमैन।

पीपल, अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट. अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड. क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब में चीव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टेका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
5: On a ride.

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑयोम टेका।

noise. वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका.

0: 쇼인가?
1: 클럽 매치 only on 매치. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: 아빠께 सामने सवाल है, 아빠께 घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
3: Of course, मेरी बेटी. She's damn smart.
2: पक्का? Final answer.
3: Final answer.
4: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो. मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट. अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए.
5: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा टू 9033647244, दैट इज 903

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

0: जय जय शिव शंकर अज मूड है भयंकर रंग उड़ी रे दो
1: यू आर पॉनी विद ओयोनिका एंड डीजे रिचर्ड.

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोन टेका स्टार्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि लाइफ इतनी मुश्किल क्यों लगती है जबकि दूसरों की जिंदगी इतनी आसान नजर आती है। बेसिकली द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड।
3: पहले तो लाइफ अप्स एंड डाउन्स होती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ज्यादा मुश्किल जो चीज है वो आपका मन आपको हर्ट क्रिएट कर रहा है। सारा समय दूसरे की लाइफ देख रहे हैं, वो भी रियलिटी कहाँ दिखाई देती है? हम मेजोरिटी लोगों की लाइफ देखते कहाँ पर है? सोशल मीडिया पे
2: या जो बाहर दिखता है।
3: ज्यादातर कंपेरिजन सोशल मीडिया पर आजकल होने लगा है। सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए बना हुआ है, वो ऐसा फील कराता है कि कनेक्शन के लिए, पर वो कनेक्शन के लिए है नहीं।
2: सही बात।
3: जितने लोग हमारे वहाँ पे फॉलोअर्स आते हैं, वो कोई कनेक्शन नहीं है। सोशल मीडिया से हर कोई वैलिडेशन ले रहा है। आप नोट करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे, जो बहुत बहुत कंटेंट होंगे ना अपनी लाइफ से, वो पोस्ट ही नहीं करते।
2: हाँ, बिल्कुल।
3: पता नहीं आपने नोट किया है कि नहीं किया है, वो बहुत एक्टिव होते ही नहीं है। और अगर उन्होंने कभी पोस्ट कर भी दिया तो वो करके भूल जाते हैं। लेकिन जिनको वैलिडेशन चाहिए, जिनको थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए, वो थोड़े थोड़े समय पर पोस्ट करते रहेंगे। ड्रेस क्या पहना, खाना क्या खाया, घूमने कहाँ गए। अब हम उनकी कई बार जो रियलिटी है लाइफ की, वो भी नहीं पता। जो रियल लाइफ है उसमें देखते जा रहे हैं और देख देख करके कंपेयर करते हैं। और मन ऐसा कहता है कि उनके लाइफ में सब बहुत अच्छा है, वो बहुत कंफर्टेबल है, वो बहुत घूम रहे हैं, तो अंदर में जेलसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जेलसी आपकी लाइफ को ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है। वो जेलसी आपकी सोल पावर को डिप्लीट कर रही है। और इसीलिए आपके जीवन के छोटे छोटे पेपर भी आपको पहाड़ लग रहे होंगे। बाकी तो कोई का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कोई बात नहीं आए। हर एक के जीवन में छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें कभी कभी आती है, पर छोटी छोटी बातें तो होती हैं। आप जितना अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, अपने रेजिलियंस को बढ़ाएंगे, उतना वो बातें आपको छोटी लगेंगे। एक ही चीज आप कितनी बार देखेंगे, सीन एक ही होता है। एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट डिले हो गई, 200 पैसेंजर है, सब एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं।
2: कुछ बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, कुछ लोग आराम से बैठे रहते हैं।
3: और कई लोगों को तो जो चीख रहे होते हैं ना, उनको इस बात का ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आराम से क्यों बैठे हैं।
2: हाँ, तुम कुछ क्यों नहीं बोले, हम ही लड़े जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ,
3: तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है। सो वन सीन, वन सिचुएशन, 200 पीपल डिफरेंट रिस्पॉन्स, क्योंकि हर एक की रेजिलियंस अलग है। जो जितना पावरफुल है वो अपने पर मेहनत करता है, जो जितना वीक है वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी रेजिलियंस को बढ़ाएं और लाइफ को एंजॉय करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो पल फिलहाल है उसे प्रायोरिटी दें, बीते कल को याद करके आज को जाया ना करें। आइए इस बारे में समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: स्टीव जॉब्स जो एप्पल के कोफाउंडर रहे हैं, उन्होंने कमाल की बात कही थी कि योर टाइम इज वेरी लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ।
4: दिस इज सो ब्यूटीफुल,
3: क्योंकि दूसरों की लाइफ परफेक्ट ही लगती है, लेकिन सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां या प्रॉब्लम्स होती ही हैं।
4: और अगर परफेक्ट है भी, पहले तो होते नहीं है, और अगर परफेक्ट है भी तो खुश होना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल,
4: उनके लिए हम खुश करें। और दूसरा देखे, इतना हम चैलेंजेस से क्यों घबराते हैं? सबसे ज्यादा विजडम, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसी में से ही आता है।
3: बिल्कुल, हमेशा
4: हर एक के जीवन का ये अनुभव है। और आप किसी को कहेंगे भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उस चीज ने मुझे बेहतर बनाया, उस चीज ने मुझे, यू नो, समटाइम्स आई मीट पीपल हु गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, सरे वो स्कूल के दिन, वो कॉलेज के दिन, एंड देन आई आस्क देम डू यू वांट टू गो बैक, एंड देन दे पॉज एंड से नहीं, वापस तो नहीं जाना है।
3: सही बात।
4: तो जो था पास वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आज है, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, यही मोमेंट रियल है, उसमें आप बेस्ट अपना दें, लाइफ को एंजॉय करें। हमारी सोच दुख देती है,
3: सही बात,
4: बातें दुख नहीं देती हैं, लेकिन उन बातों के बारे में सोच सोच करके हम दुखी होते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आइए एक फकीर की छोटी सी कहानी और उसके पीछे छुपी सीख जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक कहानी है जिसमें एक फकीर होता है और वो फकीर ऐसा माना जाता है सारे गांव में कि उसका भगवान से बहुत अच्छा रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है।
4: अच्छा।
3: तो एक बहुत धनवान व्यक्ति उसके पास आकर के कहता है कि सुना है आपके तो भगवान से डायरेक्ट मुलाकात होती है।
4: हाँ।
3: तो अगली बार जब आप उससे मिले, रब से मिले, आपकी बात हो, तो जरूर उसको ये कहना कि मेरे पास उसका दिया सब कुछ है।
4: अच्छा।
3: मेरे पास हर चीज है, इसीलिए वो मुझे और कुछ नहीं दे, मेरे पास उसका दिया सब कुछ है।
4: अरे।
3: तो फकीर ने कहा ठीक है, मैं आपकी जो बात है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, वो उस तक पहुंचा दूंगा। फिर थोड़ा आगे गया तो वहां पर उसको कोई बहुत गरीब मिला।
4: हाँ।
3: जिसके पास एक फटी चादर ही उसने ओढ़ रखी थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा सुना है फकीर को कि आपका बड़ा अच्छा परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, आप उस तक पहुंचा देना। तो उसने कहा कि तुम भगवान को कहना कि कुछ तो मुझे दे दे, देखो ना मेरे पास ना खाने के लिए है ना पहनने के लिए कुछ है, तो आप उसको कहना कुछ तो मुझे दे दे। खैर जब फकीर की वार्तालाप हुई परमात्मा से, उसने दोनों की जो बात थी वो कही, तो परमात्मा ने कहा अच्छा जो धनवान है उसको कह दो कि वो शुक्राना करना बंद कर दे।
4: अच्छा।
3: वो बहुत शुक्रिया करता है हर चीज का कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, वो शुक्रिया करना बंद कर दे तो उसको मिलना बंद हो जाएगा। और उस गरीब व्यक्ति को कहो कि वो शुक्रिया करना शुरू कर दे
4: तो उसको
3: सब कुछ मिल जाएगा।
4: क्या बात है।
3: तो वापस आकर के जब उसने ये बात धनवान व्यक्ति को कही तो उसने कहा ये तो नहीं हो सकता।
4: सही बात।
3: मैं शुक्राना करना तो बंद कर ही नहीं सकता, जिस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया मैं उसका शुक्राना करना बंद नहीं कर सकता। तो उसने कहा अगर तुम शुक्राना करना बंद नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ अच्छा होना भी बंद नहीं हो सकता।
4: अरे वाह, क्या बात।
3: और ही अच्छा अच्छा होता जाएगा। और फिर जब उस गरीब को कहा कि तुम शुक्राना करना शुरू करो तो उसने कहा मैं किस चीज का शुक्राना करूं,
4: मेरे पास कुछ
3: है क्या, मेरे पास पहले वो मालिक मुझे दे तो सही, तो मैं उसका शुक्र करूं, ना मेरे पास पहनने के लिए ना खाने के लिए, मैं किस चीज का शुक्र करूं। और फिर ऐसी एक हवा सी आई कि जो चादर उसने ओढ़ी हुई थी फटी हुई वो भी उड़ के चली गई। तो भाव कहने का ये है कि हमारा जीवन हमारी सोच से बनता है।
4: क्या बात।
3: अगर हमारी सोच में शुक्राना है, हमारी सोच में धन्यवाद है, हम कंटेंट हैं, तो अच्छा अच्छा होता चला जाता है। लेकिन हमारी सोच में कंपैरिजन है, हमारी सोच में ब्लेम है, हमारी सोच में कंप्लेन है, हमारी सोच संकुचित है, तो फिर हमारे साथ वैसा ही जीवन में होता जाता है। इसलिए अच्छा सोचें और उस परमात्मा का शुक्रिया करें।
4: क्या बात, बहुत ब्यूटीफुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है। ऑफिस में मैंने एक कॉलीग के बारे में अपनी ओपिनियन किसी से शेयर की और वो बात उस तक पहुँच गयी। अब पूरी टीम का बिहेवियर बदल गया है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ।
3: पहली बात तो इस सिचुएशन ने हमें यह सिखाया कि अगर आपके ओपिनियन किसी के बारे में है तो डायरेक्ट उनको कहना चाहिए।
4: बिल्कुल।
3: ओपिनियन ना हो वो नहीं है, लेकिन जिसके बारे में है ग्रेस और डिग्निटी से जाकर के उनसे बात कीजिए। वरना ये हमें लगता है कि हमने किसी को बताया और वो आगे किसी को नहीं बताएंगे। फिर कभी कभी वो भी किसी एक को बताता है।
4: हाँ।
3: और कहता है कि बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ,
4: किसी से ना कहना।
3: एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि रूम में वो बात
4: सबको पता होती है।
3: सबको पता होती है। तो इसीलिए अगर कोई बात है, इसीलिए उसको गॉसिप फिर कहते हैं ना, तो कोई बात है पहली चीज आप डायरेक्ट उनको कहिए, और इस जो ये पूरा सीन है इसको लर्निंग की तरह ले, दोबारा कभी ऐसे नहीं करें, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति के पास बात पहुंचती है ना उसमें भावना बदल जाती है
4: और उसका वर्जन भी बदल जाता है। आपने बोला कुछ और ही होगा और पहुंचा उनके पास कुछ और ही,
3: क्योंकि हर एक का वर्जन मिक्स होता जाता है, हर एक के इंटेंट, हर एक की फीलिंग, हर एक का पर्सपेक्टिव उसमें, और जब तक वो चीज उन तक पहुंचती है तब तक वो पूरी के पूरी चेंज हो गई होती है।
4: तो ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी टीम का बिहेवियर भी बदल चुका है।
3: हाँ, मतलब गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, लाइफ में मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपने रियलाइज किया, आपने उस सीन से सीख लिया, अब अगर आपका व्यवहार सही होगा इट विल टेक टाइम। कर्म से ही हम ट्रस्ट लूज करते हैं, कर्म से ही हम ट्रस्ट विन करते हैं, तो ये जो थोड़ा समय है इसको आप एक तरह से लर्निंग की तरह आपने लिया, लेकिन अगर किसी का बिहेवियर ठीक भी नहीं है आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें, बेस्ट अफेक्ट नहीं हो। अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं आप अपने को कहें हाँ मेरी मिस्टेक थी ना, इसके कारण उनका मन थोड़े समय के लिए ऐसा है, बट आप अपने बिहेवियर को बेस्ट रखें, चाहे वो रिस्पेक्ट के लिए है, चाहे वो बात करने में काइंडनेस है, एवरीथिंग। जो गॉसिप होती है ना इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, उसका जो पार्ट होता है वो बहुत टेम्पररी होता है, धीरे धीरे जो आपकी नेचर अभी है, जो आपका व्यवहार है उसकी छाप पड़ती जाएंगी, पीछे का भूल जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पर अटेंशन नहीं दिया और सबकी एनर्जी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और आप और नेगेटिव हो गए और आपका व्यवहार और गलत हो गया, तो वो चीज विशेष साइकिल बन जाएगी,
4: और वो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ही कैन ऑल्सो गो अप टू और शी कैन, जिन्होंने भी लिखा है, जिनके बारे में बात कही थी उनको भी जाके अपोलोजाइज तो कर ही सकते हैं।
3: एब्सोल्युटली अपोलोजाइज भी कर सकते हैं और अपनी बात जो ऑनेस्टी से है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ये करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमेशा हेल्प करता है, जो भी अंदर में नेगेटिविटी होती है उसको खत्म कर देता है। पर एक परसेंट ये भी हो सकता है कि इतने सारे वर्जन सुनने के बाद वो व्यक्ति ऑलरेडी अपना एक पर्सपेक्टिव फॉर्म कर चुका है, तो अब जब आप जाकर के कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरवाजे कई बार बंद हो चुके होते हैं, तो भी कम्युनिकेट करना चाहिए।
4: बिल्कुल,
3: जो हमारा पार्ट है वो हमें फिर भी प्ले करना चाहिए, बट हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उनको भी हील होने के लिए।
4: सही बात,
3: अगर बहुत वर्जन से उन्होंने
5: हर्ट, यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम एचडी2 डब्ल्यूपीआरबी प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है कि अगर बुरे कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलता है तो अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता?
3: कर्मों का फल मिलता है लेकिन इसी जन्म में मिलता है ऐसा नहीं है। कर्म शरीर नहीं करता है। जब हम एक जन्म की बात करते हैं तो बेसिकली हम बर्थ और डेथ जो शरीर का है, लेकिन कर्म कभी शरीर ने किया ही नहीं है।
2: सही बात है।
3: कर्म शरीर के द्वारा होता है लेकिन कराते आत्मा है। आप आत्मा बोले, सोल बोले, बींग बोले, हम ह्यूमन बींग कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, इसीलिए टाइटल भी सोल को मिलता है।
2: अच्छा,
3: आप पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते
2: हैं। सही बात है।
3: आप पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हैं।
2: सही।
3: और इसलिए जब शरीर छूटता है तो आप अपना कार्मिक अकाउंट साथ में लेकर जाते हैं और उसी अनुसार आपका अगला जन्म भी होता है। इसीलिए किसी का जन्म में हम देखते हैं गोल्डन स्पून एंड माउथ, किसी को खाने को भी नहीं है, किसी का राजा के घर में जन्म हो रहा है, किसी को रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। तो वो कर्मों का हिसाब किताब साथ में जाता है। तो पहले तो ये बात ही रॉन्ग है कि वो उसी जन्म में मिलेगा, लेकिन आएगा जरूर रिटर्न।
2: सही बात।
3: चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, कर्म का कॉन्सिक्वेंस होता ही है। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब सिर्फ बुरा नहीं होता, अच्छा भी है बुरा भी है। कितना कुछ अच्छे को तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म होना, अच्छा शरीर मिलना, हेल्दी शरीर मिलना, चल सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे भी तो है ना जो जन्म से देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, अच्छा परिवार, अच्छी एजुकेशन, ये सब भी तो क्या है, कर्मों का ही तो फल है ना। तो इसलिए वो भी एक लंबी लिस्ट है।
2: बहुत बढ़िया। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि आस्क फॉर नथिंग, वॉन्ट नथिंग इन रिटर्न, गिव वॉट यू हैव, इट विल कम बैक टू यू, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली डू नॉट थिंक ऑफ इट राइट नाउ। वही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन कुछ मांगो मत, कुछ वापस मत चाहो कि मुझे मिले, और जो है वो देते जाओ और वो वापस आ जाएगा आपको, लेकिन उसके बारे में इस वक्त मत सोचो, वो अपना एक प्रोसेस है, वो होता रहेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कृष्णा और अर्जुन के बीच हुई एक वार्तालाप हमें क्या सिखाती है, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अर्जुन और कृष्ण कहीं पर जा रहे थे
2: जी,
3: और वहाँ पर उन्होंने एक भिखारी को देखा।
2: हाँ।
3: तो अर्जुन ने कृष्ण को कहा, अरे तुमने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, फिर उसमें ये भिखारी क्यों बनाया? तो फिर उसने भिखारी को जाकर के पूछा कि तुम क्या हो गया? तो फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, जीवन में दुख की घड़ी सबके सामने आती है। उसने उसको कुछ सोने की अशर्फियां दे दी।
2: अच्छा।
3: वो आगे चले गए, वो भिखारी भी चला गया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई चोर आए और उसकी जो
2: अशर्फियां
3: थी उसको लेकर के चले गए। अगले दिन फिर वो भीख मांग रहा था, फिर उन्होंने देखा कृष्ण और अर्जुन ने। अर्जुन ने फिर कहा, अरे क्या हो गया, कल ही तो तुमको दी थी। उसने कहा, वो चोर आए, मारपीट करके ले गए। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जीवन में ऐसा होता रहता है। फिर उसको एक हीरा दे दिया कि कोई बात नहीं, अपना जीवन अच्छे से जी लो। वो फिर बहुत खुश हो गया और बहुत हीरे को संभाल करके घर में गया, और घर में वो पड़े थे जो घड़ा होता है ना, जिसमें पानी भरते हैं, तो एक घड़े में डाल दिया कि अब तो उसको कोई नहीं चुरा सकता। तो अगले दिन जब उसकी पत्नी उठी, वो पानी भरने के लिए जा रही थी, अब अनफॉर्चुनेटली उसने वही घड़ा उठा लिया। वही घड़ा उठाया, पानी भरने गई, तो पानी भरा तो वो जो हीरा था वो तो पानी में चला गया, पानी भर के आ गई। तीसरे दिन फिर जब वो उस रास्ते से निकले तो भिखारी फिर वहीं पर, तो उसने अर्जुन ने कहा, अब क्या हो गया? तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर श्री कृष्ण ने उसको 2 पैसे दे दिए, कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब जब वो 2 पैसे लेकर के जा रहा था, तो वहां पर देखा कि नदी के किनारे किसी ने एक मछली पकड़ी होगी, वो मछली बहुत तड़प रही थी। तो बहुत तड़पता हुआ उसको देखा, तो उसने कहा, ये 2 पैसे से मेरा क्या बनेगा? तो वो 2 पैसे उसने उसको देकर के मछली खरीदी और उसको पानी में छोड़ दिया कि बेचारी इतनी तड़प रही है, इसको नया जीवन मिल जाएगा। जैसे उसने उसको पानी में छोड़ा, उसके मुंह से हीरा निकल गया। और जैसे उसने हीरा देखा तो उसने कहा, मिल गया मिल गया। अब जैसे ही बोला मिल गया मिल गया, तो वो चोर पीछे थे तो उनको लगा वो उसके लिए कह रहे हैं मिल गया मिल गया। तो वो एकदम घबरा करके कहे कि शोर नहीं मचाओ, तुमने शोर मचाया गांव में तो गांव वाले हमें निकाल देंगे, ये लो तुम्हारी जो सोने की अशर्फियां अपने पास रखो। तो हीरा भी मिल गया, सोने की अशर्फियां भी जो थी मिल गई। तो फिर अर्जुन ने पूछा कृष्ण को कि ये क्या हो गया? तो उसने कहा कि जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था तब तक उसको कुछ नहीं मिला।
2: क्या बात है?
3: लेकिन जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तो मैंने उसके बारे में सोचा।
2: वाह क्या बात,
3: ये कर्मों का सिद्धांत है।
2: जब
3: हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम देना शुरू करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में सर्विस आ जाती है, सेवा का भाव आ जाता है और उसके अंदर भी निस्वार्थ आ जाता है।
2: ब्यूटीफुल।
3: तो फिर वो हमारे बारे में सोचता है, और इसलिए आप दुनिया में कभी भी किसी को मिलेंगे जो दान करते हैं, चाहे धन का, समय का, शक्ति का, स्किल का, किसी भी चीज का, उनको उस चीज की कभी भी कमी नहीं होती, वो चीज और ही बरकत को पाती जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। परी लिखती हैं, हम अक्सर दूसरों की बात मान लेते हैं लेकिन अपने मन की आवाज को इग्नोर क्यों करते हैं?
3: नहीं करना चाहिए, दोनों के प्रति ध्यान देना चाहिए। हमें वो करना है जो सही है। अपना मन भी कई बार धोखा देता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन हर बार जो कहता है वो राइट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे हर बार कहते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। तो कोई मुझे मेरे मन की माननी है या आपके मन की माननी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो राइट है, जो सही है, वो करना है। तो चाहे वो आपका मन है या दूसरे का मन है, पर वो परख शक्ति होनी चाहिए कि राइट क्या है।
2: वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है।
3: विजडम अनुभव से भी आता है, स्क्रिप्चर से भी आता है, अच्छी बातें सुनने पढ़ने

0: से भी आता है. और वेन यू नो बेटर यू डू बेटर. जब आपको नहीं पता था तो इग्नोरेंस भी कोई क्राइम नहीं है. लेकिन फिर भी अपने विजडम को डेवलप करने की मेहनत करनी चाहिए कि आपको ये क्लैरिटी हो कि राइट क्या है और आप राइट कर सकें.
1: स्टीव जॉब्स ने बहुत कमाल की बात कही थी, उसे कई लोग जरूरी नहीं मानते हैं, अग्री करते हैं, कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर इनर वॉइस. वो इसलिए कह पाते थे ये बात क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है.
0: नहीं, अगर आपको अपने इनर वॉइस पर कन्विक्शन है
1: तब जरूर करें,
0: तब जरूर करना चाहिए. देखो, कई बार हमें क्लैरिटी होती है कि ये राइट है, पर हम दूसरों के ओपिनियंस में हमें अपने पर डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं. एक है ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मेरा मन जो कह रहा है वो सही है. जैसे एक बच्चा होता है ना, उसका मन करता है कि मैं मुझे ये करना है. पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये राइट नहीं है, ये आपके भले के लिए नहीं है. तो वो एक क्लैरिटी अलग चीज है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है. एक एक कन्विक्शन है अपनी बात पर, अपने प्रिंसिपल पर आपको फेथ है. लेकिन आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है जस्ट बिकॉज पीपल डोंट अग्री विद यू या पीपल डोंट एक्सेप्ट यू.
1: और ये बहुत बात जरूरी है क्योंकि जब तक वो कन्विक्शन नहीं आता आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? मिर्ची recharge mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सरफराज हैं कानपुर से, लिखते हैं, क्या हर बार हाँ कहना अच्छी बात है या कभी ना कहना भी जरूरी होता है?
3: नहीं, हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, लेकिन ना कहने का तरीका ठीक होना चाहिए।
2: हाँ, वो गुस्से में नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, मना सभ्यता से करें, डिग्निटी से करें। ना तो कई बार कहनी पड़ती है। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि वो चीज राइट नहीं है तो भी आपको ना कहना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं आपको हाँ कर दूं, किसी चीज के लिए कमिट कर दूं और फिर ना
2: कर नहीं पाऊं। हाँ,
3: चाहे वो एक टीम के अंदर ही कुछ काम हो, मैं कहूँ नहीं नहीं हाँ जी करना था पर मैं करूँ नहीं उस चीज को, तो भी वो चीज राइट नहीं है कमिट करके करना। और कभी ऐसा हो सकता है मैं कर भी सकती हूँ लेकिन आज मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी कमिटमेंट्स ले चुकी हूँ, तो भी मुझे आपको ना कहना पड़ेगा। सो देयर बी मेनी मेनी सिनेरियोज जहाँ पर ना कहना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्टफुली कहें,
2: बहुत बढ़िया,
3: डिग्निटी के साथ कहें, सभ्यता के साथ कहें, कई जगह पर ना कहना पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत लापरवाह भी हैं। उनकी आदतों पर रोज छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं और रिश्ता खराब होता जा रहा है, मैं क्या करूँ?
3: देखो, हर आत्मा के अंदर कुछ अच्छाई होती है और कुछ मना कमियां भी होती हैं। ये ऐसे है कि जैसे साड़ी प्लेन वाइट है पर इस पे कुछ दाग है। अब आपको अपने कॉन्शियसनेस में दाग रखने हैं या उनकी विशेषताएं रखनी है।
2: बहुत बढ़िया।
3: इसका मतलब ये नहीं है कि वो दाग राइट हैं और हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जैसी वृत्ति होती है वैसा वाइब्रेशन होता है, वैसा घर का वायुमंडल होता है। तो वृत्ति मना अपने एटीट्यूड में आप उनकी विशेषताएं रखें, आपके वाइब्रेशन में उनके प्रति रिस्पेक्ट रखें और घर के वायुमंडल को पॉजिटिव रखें, और फिर अगर कोई दाग है तो उसके बारे में किसी को इशारा दें।
2: सही बात।
3: लेकिन अगर वृत्ति में दाग है और वही वाइब्रेशन है और वही कॉन्वर्सेशन है और वही एनवायरमेंट है, तो वो सोल को कमजोर करता है, और कमजोर आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकती। तो किसी बात का इशारा देना, इंस्पायर करना, एम्पावर करना अलग है, लेकिन उस पर आर्ग्यू करना, डिबेट करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, वो फिर आपके रिश्ते को भी कमजोर कर रहा है और घर के वायुमंडल को भी खराब कर रहा है।
2: और वैसे भी हमको याद रखना है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी आसमान तो कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात शुरू में कही कि बहुत अच्छे इंसान है, उस पे ही ध्यान दें।
3: ध्यान उस पर दे, मतलब कॉन्शियसनेस में वो रखें। ध्यान हमारा कमी पर भी है, लेकिन वो चीज हमारे मन का और वृत्ति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले,
2: लेकिन उसे अफेक्ट नहीं हो,
3: लेकिन उसको अपनी वृत्ति मतलब एटीट्यूड, क्योंकि जैसा एटीट्यूड होगा वैसा परसेप्शन होगा, जैसा परसेप्शन होगा वैसा एक्शन होगा, जैसा एक्शन होगा वैसा आपकी डेस्टिनी होगी। तो अंदर तक उसको पकड़ के रखेंगे तो आपके व्यवहार में गुस्सा, आपके व्यवहार में रिजेक्शन, वो सब आने लगेगा जो रिश्ते को कमजोर करेगा। तो व्यवहार आपका अच्छा हो और इशारा दें, पेशेंट रहें, एम्पावर करें, बदल जाएंगे, सब बदलने के लिए आए हैं।
2: और खुश रहें कि आपको बुरा इंसान नहीं मिला।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
16: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
17: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
16: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
17: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
16: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
18: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है कि मेरी बाई जो है वो बहुत ईमानदार है, लेकिन काम में बार बार गलतियां करती है। क्या उसे बार बार माफ कर देना सही है या उससे अब खुलकर बात करनी चाहिए?
3: पहले तो ईमानदार है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है।
2: बिल्कुल,
3: आजकल के समय पर ये जल्दी से मिलती नहीं है। तो उस क्वालिटी के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर वो ठीक से काम नहीं करती तो खुल के बात करना बहुत जरूरी है। खुल के बात करें पर गुस्सा नहीं करें। बहुत करके हम बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते, पर मन में डिस्टर्ब होते रहते हैं।
2: सही।
3: घर में भी सबको बोलते हैं, रेडियो पर भी सवाल भेज रहे हैं जो अच्छी बात है। लेकिन इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट बैठ करके उससे बात करें। फिर अगर आपको उनको रिटेन करना है तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बात करने से व्यक्ति रियलाइज करता है, इमीडिएट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं है। आप बात करेंगे तो शायद आपको समझेगा कि उसके मन में कोई और बोझ है जिसके कारण उससे केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हैं। आप बात करें, उसको एम्पावर करें, उसको हेल्प करें, पर आपके पास वो धैर्यता का गुण होना चाहिए।
2: सही बात, बहुत बढ़िया।
3: और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और ये उसका पैटर्न है और वो बदलना ही नहीं चाहते, और फिर अगर आप किसी को चेंज भी करना चाहते हैं तो वो ओके है, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए।
2: बेसिकली आप जो कह रही हैं वो कबीर बहुत साल पहले कह के गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो गुस्सा नहीं करना, आराम से पेशेंट से बात करिए, हल जरूर मिलेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે. ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
3: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
2: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે, ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
8: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियन्स ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे. व्हाट डू वी डू?
9: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, क्या जरूरत से ज्यादा सोना डिप्रेशन की निशानी हो सकता है?
3: कुड बी वन ऑफ द रीजन, पर अभी देखो फिर भी ये किसी के लिए कहना डिफिकल्ट है। पहले तो जरूरत से ज्यादा सोना कितना है वो भी डिपेंड करता है।
2: हम ज़ूमिंग 10 घंटों से ज्यादा ही बोल रहे होंगे।
3: कभी कभी किसी का फिजिकल लेबर होता है,
2: हाँ, तो थकावट ज्यादा होती
3: है। थकावट ज्यादा भी हो सकती है। कभी कभी बच्चे हैं, ज्यादा भी सोते हैं, लेकिन अगर उनको फील हो रहा है कि वो पहले कम सोते थे,
2: हाँ,
3: और अभी ज्यादा सो रहे हैं, तो डिप्रेशन के बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ ज्यादा सोना ही नहीं होता। उसमें मेन चीज तो ये है कि आप उदास हैं। आप जो फर्स्ट फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए, और वो उदासी लंबा समय चलती है। हम सब कई बार उदास होते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, लेकिन ये उदासी से आप बाउंस बैक ही नहीं कर पा रहे होते। आप उदास हैं, किसी से मिलने के दिल नहीं है, कुछ काम करने के दिल नहीं है, तो वो फिर धीरे धीरे जब मन बहुत थकता है तो तन भी ज्यादा थकता है। आपको उठने की दिल ही नहीं होती, आपको किसी से मिलने की दिल ही नहीं होती। सो इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर, बट फिर भी आप डॉक्टर से राय करेंगे तो बेटर है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
3: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the queen of pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: फ्री एंट्री, वन डे, वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन. इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड. फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज. फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? Mirchi Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, अनोनिमस है। क्या पेट्स यानी कि पालतू जानवर हमें चुनते हैं या उनसे सच में हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है?
3: कार्मिक अकाउंट होता है, जानवर के साथ भी होता है।
2: अच्छा,
3: जानवर का भी होता है।
2: हाँ।
3: आप देखिए, ऑल एनिमल्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली।
2: एब्सोल्युटली।
3: कहीं जानवर ऐसे हैं जो इतने घर में इतने कंफर्ट से पलते हैं,
2: और कुछ,
3: और हम कई बार देखते भी थे ना, लेटली आप देखेंगे बारिश होगी तो उन्होंने भी रेनकोट पहना होगा। और कई ऐसे हैं जिनको शायद खाने के लिए भी ना मिलता हो, तो उनका भी अपना कार्मिक अकाउंट जानवर का भी होता है, और हमारे साथ भी जरूर होता है, क्योंकि कई बार कोई कोई जानवर हमें कितनी खुशी, कितना सुख और कितनी लॉयल्टी दे करके जाता है, तो ये तो होता है।
2: मैं भी इत्तेफाकन एक पेट पेरेंट बना। हमारे खानदान में कभी किसी ने पेट नहीं रखा, और एक दिन मेरी बेटी ने जिद करके ऐसे ले आया, और आज मुझे लगता है कि उसके कारण हम ज्यादा क्लोज हैं। और जो भी पेट पेरेंट हैं या जिनको पेट्स बहुत पसंद है, एक फिल्म मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, आप जरूर देखें, 777 चार्ली, ये 2020-21 में फिल्म आई थी। और उनकी भी जिंदगी में, चार्ली जो होते हैं उनकी जिंदगी में एक्सीडेंट से एक पेट आ जाता है, और वो बिल्कुल नहीं पसंद करते उसको, और फिर वो बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी उनकी होती है। तो अगर आप पेट पेरेंट हैं, आपको पेट्स पसंद है, तो ये फिल्म आप जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रॉक्सिमिटी को ग्रेटनेस क्यों समझ लेते हैं हम, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में ना मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक पार्टी में बुलाया और मैं गया तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ बहुत सारे दिग्गज लोग आने वाले हैं। तो एक वहाँ पे इंसान था, बहुत उसने हाल फिलहाल में बम्बई आके एक OTT शो भी किया और एक बहुत ही बड़े लेजेंड के साथ उसने काम किया। तो उनसे पूछ रहे थे कि भाई आपके लिए आपकी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सो एंड सो लेजेंड के साथ काम किया और उनके साथ मेरी फोटो है। तो एक सज्जन पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसमें अकम्प्लिशमेंट कहाँ है, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आपके साथ फोटो खिंचवा ली। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी टू ग्रेटनेस जब होता है ना, हम उसी को अकम्प्लिशमेंट मान लेते हैं। हमने जो काम किया है या हमारी जो जर्नी है उस पर ध्यान नहीं देते। तो आपके लिए एक्चुअली सक्सेस का यार्डस्टिक इस केस में क्या है?
4: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक है किसी से इंटिमिडेट होना, एक है उतने कोई ग्रेटनेस फील करना कि आप उनके साथ फोटो खिंचवा सके, और एक है कि शायद आपके पास कोई फोटो नहीं है किसी के साथ। पर हर व्यक्ति जो अपनी फील्ड में महान है, ग्रेट है, उसकी क्या कारण है जिसके कारण वो ग्रेट है
3: उसको समझना।
4: हर सफल व्यक्ति की कोई तो विशेषताएं होती हैं। कई बार हम बाद में देखते हैं या जब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या कभी इंटरव्यू सुनते हैं, देयर इज सम स्पेशलिटी, देयर सम क्वालिटी दैट हैज अलाउड देम टू बी सो ग्रेट। हार्डवर्क हो सकता है, सिंसेरिटी है, ह्यूमिलिटी है। उन चीजों को समझना, उनको अपने जीवन में अक्वायर करना, एम्यूलेट करना उनको, हम उनको इमिटेट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उन चीजों को एम्यूलेट करना, आई थिंक दैट इज ट्रू ग्रेटनेस।
3: ये बिल्कुल सही कह रही हैं सिस्टर, लेकिन कई बार क्या होता है, आम इंसान भी होते हैं ना, जैसे बहुत लोग हैं उनको लगता है अरे तुम शबाना आजमी के साथ काम कर रहे हो, अरे तुमने नसीर साहब के साथ काम किया, अनुपम खेर बच्चन साहब के साथ काम किया, तो नवाज उद्दीन सिद्दीकी साथ तुमने एक फिल्म की है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है।
4: नहीं, वो तो बड़ी बात है ही ना, आप काम कर रहे, एक है सिर्फ फोटो खिंचवाना, एक है आप किसी अकम्प्लिश्ड एक्टर के साथ अगर काम कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि आप भी किसी लेवल तक तो अकम्प्लिश्ड होंगे ना, फॉर यू टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम। तो उस चीज का शुक्रिया होना चाहिए, ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
3: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज. इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ.
7: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा. कॉल 9549188589.
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
15: करियर में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हार्डवर्क के साथ रीपोजिशनिंग भी ना जरूरी हो जाती है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. एंड व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स, एआई, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड इवन यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, कभी कभी ना नेचुरली एक सवाल आ ही जाता है, एम आई स्टिल रेलिवेंट? और अगर ये सवाल आपके भी माइंड में कभी आया है, देन न्यू जर्सी, मार्क दिस डेट, September 27, बिकॉज कमिंग टू शेरेटन एडिसन आर 4-time TEDx स्पीकर्स, best-selling authors and multi-award-winning career coaches Shilpa and Kapil Kulshreshth, bringing in their in-person career growth workshops to New Jersey. They have helped 1,500-plus mid-career professionals accelerate promotion, get double promotion, improve visibility, strengthen leadership presence, attract bigger opportunities, and even achieve 50-180% salary raises. This workshop is designed to help you revitalize your career, reposition your value, and move forward with more clarity and confidence. So, aaj hi register kijiye at playitful.com/NJ. That's playitful.com/NJ. Aur ab, next level career energy ke liye, next level gana, right here on Mirchi, it's hot.
16: Positivity कोई location थोड़ी है कि map पे डाला और पहुंच गए. It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या किसी बड़े नाम से ना जुड़ पाने की वजह से आप अपनी कला पर डाउट कर रहे हैं? तो ये जरूर सुनिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हमको लगता है कि कभी कभी आम इंसान की नजर में, जैसे अगर मैं एवरेज इंसान हूँ, हमारे लिए उसकी कला जो है उसका वैलिडेशन तभी होता है जब वो इन नामों के साथ जुड़ता है। वो कह रहा है मैं तो 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ यार, तुमने तो आज तक मेरी वाह वाह ही नहीं की। तो ये जो है, अगर मैं परसेप्शन चेंज करने जाऊं, अनलेस मैं किसी बड़े नाम के साथ जोड़ा नहीं जाऊं, मेरी कला की कोई पहचान नहीं करता।
4: देखो, जितने लोग हैं वो जिस बेस पर वैलिडेशन देते हैं वो हर एक अलग अलग होता है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी पर्सन। कोई कला की वैल्यू करता है, कोई ये चीज की वैल्यू करता है कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं।
3: जी,
4: अभी ये भी एक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि कला आपके पास है कि नहीं,
3: उससे फर्क नहीं पड़ता,
4: उससे फर्क फॉलोअर्स आपके कितने हैं। कोई ये चीज से वैलिडेट करता है कि आपने कितने बड़ों बड़ों के साथ काम किया। अब सबका क्या वैलिडेट करने का तरीका है या उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो तो जितने लोग हैं उतने अलग हैं। इम्पोर्टेंट ये है आप अपने को किस चीज से वैलिडेट करते हैं, आप अपने को किस चीज से रिस्पेक्ट करते हैं, कला से या सिर्फ इसलिए कि हमने किसी के साथ फोटो खिंचवा ली। दैट इज ओनली इन आर कंट्रोल। बाकी सबके पर्सपेक्टिव तो हम बदल नहीं सकते। और मुझे ये भी लगता है जैसे आप होते हैं आप वैसे ही रहें, तो सूनर और लेटर जिस प्रकार के लोगों को आप पसंद करते हैं आप मिल जाएंगे। यू विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल। समटाइम्स क्या होता है, हम फिर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ शेड ऑफ ग्रीन एंड यू आर द बेस्ट शेड ऑफ ग्रीन, पर अगर किसी को ब्लू पसंद है
3: तो क्या ही कर सकते हैं,
4: यू विल बी नेवर गुड इनफ फॉर देम।
3: राइट, एब्सोल्युटली।
4: फिर आप थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएंगे कि मैं ग्रीन से थोड़ा सा ब्लू हूँ, और उसमें आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा बिकॉज दैट मे नॉट बी ट्रू टू योर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज या आपके जीवन जीने का तरीका। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप वो शेड ऑफ ग्रीन रहें और थोड़ा सा पेशेंट रहें, सो समबडी हु इज लुकिंग फॉर यू
3: विल कम टू यू,
4: विल फाइंड यू एंड विल वैल्यू यू ऑल्सो।
3: वेरी नाइस।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
13: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
14: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
13: Wait, they can see us on Sunday?
14: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। दिलीप सिंह चौहान है जयपुर से, लिखते हैं कि व्हाट इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सही कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे

0: है अपनी जिंदगी में?
1: वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस एक बेसिकली आप एक एलिवेटेड स्टेज में जाकर के सब कर्म कर सकते हैं। आप अगर कहें फॉर एग्जाम्पल, मैं उनको कह भी दूं कि वर्क लाइफ बैलेंस में आप जितना समय वर्क पर देते हैं उतना समय आप घर पर दें, बट आई डोंट नो व्हाट हिज प्रोफाइल जॉब है।
0: बिल्कुल।
1: आज कोई मिलिट्री में है,
0: वो नहीं पाता।
1: आज कोई सर्जन है, उसको अचानक रात को भी उठ करके जाना पड़ता है। तो आपका अगर वो वर्क है और प्रोफेशन है, वो डिमांड करता है, किसी का 8 घंटे करता है, किसी का 12 घंटे करता है, किसी का 6 घंटे भी करता, 6 महीने भी करता है, दे डोंट मीट देयर फैमिलीज फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो। लेकिन जितना समय आप हैं उनके साथ, पहली चीज, अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो करें। कहाँ आप कट कर सकते हैं, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो आप कट कर सकते हैं, इनकेस इफ यू कैन स्पेंड मोर टाइम, डू इट, दैट इज वन। सेकेंड, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो छोड़ दें, गिल्ट में नहीं जाएं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
1: नहीं जाएं गिल्ट में। अगर आपका वर्क डिमांडिंग है, वो आपको करना ही है, तो उस ऑप्शन को खत्म कर दें, अपने मन से गिल्ट को निकाल दें। अगर आप अब 2 ही घंटे अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, मेक इट क्वालिटी।
0: मेंटली प्रेजेंट रहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं।
1: मेंटली प्रेजेंट रहिए, उस समय पर भी मेल्स चेक कर रहे हैं या वर्क प्लेस पर हैं या आई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हमें पता है, बहुत समय नहीं चाहिए होता, क्वालिटी टाइम चाहिए होता।
0: बिल्कुल, बहुत सही।
1: थर्ड, आप अगर नहीं भी है, सो फैमिली के साथ हमारा जो कनेक्शन है ना, इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज वाइब्रेशनल ऑल्सो। तो समझो आज बच्चे का एग्जाम है, आप उसके लिए फिजिकली वहां पर नहीं है, लेकिन एट अ वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो आप सोचते हैं कि उसका बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: वो सफल होगा, आई एम देयर फॉर यू। आप 1 मिनट ही बात करते हैं उसके साथ और कहते हैं बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है आपने सफल होना है, दैट विल ऑल्सो एम्पावर योर चाइल्ड। कई बार उनको टाइम नहीं चाहिए होता, पावर चाहिए होती।
0: सही बात।
1: आप कहीं से भी दे सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन आप सोचे जा रहे हैं, एज अ मदर आप गिल्ट में जा रहे हैं, आई कांट गिव टाइम टू माई चाइल्ड, मैं समय नहीं दे पाती, उसका एग्जाम है। वो जो कहते हैं ना, हर मदर को एक गिल्ट ट्रिप होती है। नहीं करें, या तो छोड़ दें जो आप कर रहे हैं, या आप नहीं छोड़ सकते तो अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एलिवेट कर लें कि आपका वाइब्रेशन भी उनको एम्पावर करें,
0: पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
8: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अभिषेक शेटिया पूछते हैं कि भाई मैं रेगुलरली कैसे पढ़ाई करूं, शायद मेरा मन भटकता, ध्यान नहीं लगा पाते हैं वो।
2: शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, अपनी कैपेसिटी को देख करके गोल्स बनाएं और डिटरमिंड रहें। हमारा मन थोड़ा सा क्या करता है, अपने से प्रॉमिस करता है, बहुत अच्छा प्रॉमिस करता है, ऑनेस्टली प्रॉमिस करता है कि मैं रोज पढ़ूंगा, लेकिन जिस चीज की कमी होती है वो है डिटर्मिनेशन।
1: बिल्कुल,
2: मैं कई बार कहती हूँ डिटर्मिनेशन इज लाइक, आपने प्रॉमिस किया, इट्स लाइक सोइंग अ सीड, फिर उसको रोज पानी देना पड़ता है।
1: बहुत जरूरी।
2: तो डिटर्मिनेशन क्या है, अपने को याद दिलाना कि रोज पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि दिस विल ब्रिंग गुड मार्क्स, विल लीड टू गुड कॉलेज, विल लीड टू माई ड्रीम जॉब। तो अपने को आप मोटिवेट करें और ऐसा गोल बनाएं जो अचीवेबल हो। ऐसा गोल कई बार हम बना लेते हैं जो
1: 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, कभी कभी नहीं होता है। अपने आपको बोलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा
2: कैपेसिटी से बनाए, चाहे कोई 18 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी को देखें, 2 घंटे से शुरू करें, 1 घंटे से शुरू करें। आप जब उसको अचीव करेंगे, जब हम छोटा गोल बनाते हैं और हम उसको अचीव करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है।
1: तो फिर अपने आप,
2: फिर वो खुशी हमें अपने आप मोटिवेट करती है और हम अपने छोटे गोल से लार्जर गोल्स को अचीव कर पाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माय नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

आई हेट इट सो मच दैट आई एक्चुअली लव इट. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: Kulen ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है।
3: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं दीदी। मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे कपड़े
3: कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम। ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए?
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
10: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
14: I am not going to bed with you ever again.
13: But why? What did I do?
14: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
13: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
14: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
13: Yes, come soon. Honey!
14: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
13: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
15: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
17: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
9: to aaiye fashion queen. Yahan milega
19: रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
19: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But dono ko ek dusre ke sath film karna kya raas aaya jaan lete hain.
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor and I've always admired his work and ye experience karne ke liye on set with him bahut maza aaya and he's really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, उसका जोन, उसकी वाइब एक और गाने से काफी मिलती जुलती है। बट उससे पहले आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हाँ मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shop का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
13: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે, ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ। આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
14: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
13: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન। વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર વિસ્કાટવે ઓન 7323578200। જય ગુરુદેવ।
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी।
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
18: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
18: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
17: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुले 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे, वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस। तनिष बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Sureen.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy और
10: confusion ही confusion.
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: है? नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब
1: नहीं। मैं कल को
0: फोटो खींचे,
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन, इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भरतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virpa, la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं. नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें. हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: गुड मॉर्निंग. सांभळी रह्या छो मिर्ची. हूँ छो कृतार्थ. चलो हूँ तुमने एक सरस मजानी वार्ता कहूँ. एक शहर में पहली वक्त मॉल खुल्यो એટલે દરેકને એક્સાઇટમેન્ટ હતું. હવે શહેરમાં જેને એક સાધુ મહાત્મા રહેતા હતા એમના ચેલાઓ એમની પાસે ગયા અને એમને કહ્યું કે અરે મહારાજ ચાલો અમારી સાથે. શહેરમાં એક નવો મોલ ખુલ્યો છે. મારે તમને બતાવવા માટે લઈ જવો છે કે જુઓ તો ખરા કે દુનિયામાં કેવું કેવું હોય કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે. અમે લોકો તો જોઈને આવ્યા ગઈકાલે. તમે ચાલો. એમને કહ્યું કે ઠીક છે ચેલાઓ કહે છે તો જઈને જોઈએ કંઈક તો હશે. એ જયારે ગયા આખો મોલ જોયો ફર્યા બધી જ દુકાનો એક્સપ્લોર કરી એક એક સામાન ઉચકીને જોયો. એના પછી ચેલાઓએ પૂછ્યું કે મહારાજ કેવું લાગ્યું? મજા પડી ને? કઈક નવું જોવા માટે મળ્યું ને? તો કે હા યાર મજા તો પડી બટ હું એ વાત જાણીને બહુ જ ખુશ છું કે દુનિયામાં એવી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે કે જેના વગર હું ખુશ છું. આ વાત ધ્યાનથી સાંભળજો કે દુનિયામાં કેટલી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જેના વગર પણ મને ચાલી જાય છે. હમણાં સુધી આમાંની એક પણ આઈટમ મારા નાનકડા ઘરમાં મંદિરમાં છે જ નહીં એના છતાંય મારું જીવન કેટલું સરસ ચાલે છે. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી. હું છું તમારો કૃતાર્થ. ગુડ મોર્નિંગ. હોપફુલી આ વાતથી તમને કંઈક સમજાય.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: गणपति बप्पा आते ही एक ही फीलिंग होती है, नए शुरुआत की, ऑब्स्टेकल्स हटाने की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ने की। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और करियर में भी ना कभी कभी वही जरूरी होता है, बिकॉज व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स, AI, टेक्नोलॉजी चेंजेस, यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है, Am I still relevant? तो शायद वक्त आ गया है अपने नेक्स्ट चैप्टर को और थोड़ा क्लियरली देखने का। सो न्यू जर्सी, मार्क द डेट, September 27th, 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ आ रहे हैं न्यू जर्सी में। दे आर कमिंग टू शेरेटन एडिसन फॉर एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप। They have helped 1500 plus mid-career professional accelerate their promotions, get double promotion, improve their visibility, strengthen leadership presence, attract bigger opportunity and even get 50 to 180% salary raises. This workshop is designed to help you revitalize your career, reposition your value and move forward with more clarity and confidence. So, aaj hi jaiye, register kijiye at playitful.com/NJ. That's playitful.com/NJ and mark the date September 27 at Sheraton Edison, New Jersey. तो बप्पा के सीजन्स में ऑब्स्टेकल कम हो और ग्रोथ का रास्ता थोड़ा और क्लियर हो, इसलिए सुनते ही अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi. Iscaba la puscabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La virba la murga! ¡Mirchi, murga!
1: हेलो
2: मिल गया
3: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
4: मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर लिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू, प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू linemtg.com।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे, व्हाट डू वी डू?
9: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बका दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ, आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
0: लेंस लगाया नहीं
1: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
1: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
11: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
12: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab, mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
8: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwani.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: ना तो हीरो के बारे में है ना ही हीरोइन. This is the show जहां main character is good music and good music. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. This is the show जहां पे हफ्ते के top 10 hottest pop गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं. Connect with me Instagram पर जाओ. मेरा handle is @RJKanika. हफ्ते के top 10 hottest pop गानों में एक नई entry है. हम अपना 90s 2000s का indie pop classic करेंगे. Some special गाना shout outs, all that and more. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के countdown की with गाना number 10. संजू राठौड़ की composition, जी पाक का production. संजू राठौड़ की आवाज में गाने का नाम है Bangles. 15 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार रहा ये गाना Bangles this week on गाना number 10. उसके बाद राघव कौशिक की आवाज रेखा भारद्वाज के साथ. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है दरमिया. दिस इज द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. मुसाफिर कैफे ओटीटी शो से है ये. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगल्स ऑन नंबर 10 देन दरमिया ऑन गाना नंबर 9. ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक, अमृता सलूजा के लिरिक्स, गाने का नाम है दरमिया, मुसाफिर कैफे से है ये गाना, द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन, पिछले हफ्ते से चार्ट पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. The show is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram pe jao. Mera handle is at RJ Kanika. Matlab mera naam to mummy ne Kanika hi rakha. Pichle 7 saal se I'm bringing these top 10 songs of the week for you. And tab se RJ Kanika. It's quite odd, pata hai. Bahut log mujhe jo sirf Instagram se jante hain, jab milte hain, to hi RJ Kanika bolte hain. And you don't even realize ki wo tumhari pehchan ban jati hai. It's not a bad thing, you know. Everybody wants that takeaway factor with their art, right? Gaana number 9 par humne Darmiya suna Rekha Bharadwaj ji ki awaaz mein. Jis bhi gaane mein Rekha ji ki awaaz hoti hai, wo ek second ka gaana sunte hi hum samajh jaate hain ki are ye to Rekha Bharadwaj ji hain. Such strong is her voice, her identity. सोचने वाली बात है, इतने गाने आते हैं, इतने गाने जाते हैं, गाने सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, लोग कुछ हफ्ते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, पर कुछ गाने और कुछ आर्टिस्ट की आवाजें हमें हमेशा याद रहती हैं। इसे ही हम वो टेक अवे फैक्टर कहते हैं। वो आर्टिस्ट की आवाज हो सकती है, जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज है, ए आर रहमान जी की आवाज है, सुनते ही पता चल जाता है कौन है, या फिर वो एक कंपोजर की ब्रिलियंस हो सकती है जो वो गाने में एक इंस्ट्रूमेंटल पीस या सोलो के साथ या किसी गिटार सोलो से इंट्रोड्यूस करे। इतने सारे आइकॉनिक गाने जिनके गिटार सोलोज या इंट्रो म्यूजिक को सुनते ही हमें पता है कि कौन सा गाना है, जैसे कि दिस वन। मैंने गाने का नाम नहीं बताया, गाने की पहली लाइन नहीं आई, आपने सिंगर्स को नहीं सुना, एंड यू नो इट्स साथिया का म्यूजिक। एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको एक 90s के इंडी पॉप क्लासिक का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है। काउंटडाउन पर आगे चल के हमारे कसर क्लासिक में ये पूरा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। Now back to the countdown. अभी countdown पर आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना is a नई नवेली entry. इस गाने को छोटे बच्चे गा रहे हैं, कॉलेज वाले लोग रील्स बना रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं और आप इसको ऐसा एटीट्यूड स्टार्टर लाइन की तरह बोल रहे हैं। गाने का नाम है बूम शाकालाका बाय धंधा न्योलेवाला एंड कृष्णा। फिनोमेन हिसाब का प्रोडक्शन, बूम शाकालाका इज अ नई नवेली एंट्री, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 8.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
6: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
9: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है.
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साडी सुन। दिस सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है ये गाना, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Ghana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly believe gaane share karne se pyar badhta hai. Is show ke zariye jo gaane aap mere saath recommend karte ho aur gaano ke saath saath jo aap apne experience, kahaniyan, puri gossip bata dete ho na ki yaar tab hua tha aur ye gaane ne ye kiya tha. सबसे पहले तो कस के थैंक यू। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अश्काई, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर रिकमेंडेशंस। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जो ना तो पुराने साउंड करते हैं और ना ही नए हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी।
0: गाने का नाम है डूबा डूबा बाय द सिल्क रूट, मोहित चौहान की आवाज में। ये गाना 1998 में रिलीज हुआ था, सिल्क रूट की डेब्यू एल्बम बूंदे का पार्ट था। आई थिंक आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग। 1998 का वो दौर था जब पॉप म्यूजिक का मतलब बिल्कुल भी फिल्म जैसा म्यूजिक बनाना नहीं था, बल्कि ये गाना अपने आप में ही एक दुनिया थी, अपने आप में ही एक फिल्म थी। एंड समटाइम्स आई थिंक कि क्या तब सिल्क रूट को इस बात का कोई भी अंदाजा था कि वो हमें एक ऐसा गाना दे जाएंगे जो पूरे 30 साल बाद भी हम इतनी ही इंटेंसिटी के साथ सुनते हैं। आज भी इस गाने को सुन के एकदम मन करता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं, कि शाम का वक्त है, सूरज अभी ढला ही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है पर रोशनी भी है, पास में एक नदी बह रही है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। चाहे जगह असली हो या ना हो, बट दिस फीलिंग एंड दिस सॉन्ग ऑलवेज इमोट्स दिस। कुछ गाने भी तो हमारी जिंदगी में मेमोरी का टिकट होते हैं, दे टेक अस बैक टू दैट ओल्ड प्लेस, कोई भूला हुआ दिन, कोई दबी हुई मेमोरी। And this song by Mohit Chauhan and Silk Route is exactly that. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड चलो उस नदी के किनारे जब ढलती हुई शाम में मोहित चौहान की आवाज में सिल्क रूट का गाना डूबा डूबा आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

Man oh man, the song just gets better with every year. Mohit Chauhan ki awaaz mein, that was Duba Duba on our cassette classic this week. इस सेगमेंट के बाद मुझे सब अच्छा अच्छा लगने लगता है. जैसे आई हैव गॉन बैक टू द सिंपल टाइम, जब हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त था. वक्त था वक्त बर्बाद करने का, और वक्त बर्बाद करने का कोई गिल्ट नहीं था. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ 90s 2000s के कौन से आइकॉनिक इंडी पॉप गाने हैं जिनको जब आप आज सुनते हो सो यू आर टेकन बैक टू दो सिंपलर टाइम्स. आई एम नॉट दैट ओल्ड बट आई एम एन ओल्ड सोल. लेकिन मैं बात तो ऐसे करती हूँ, ओहो पुराने दिन सिंपल टाइम्स, बट इट इज ट्रू. But then there are some songs, आज के आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी म्यूजिक जो ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंपल कर देते हैं. एंड फरक इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोज आर्टिस्ट. काउंटडाउन का अगले वाला गाना रिटन एंड कम्पोज्ड बाय फरक, गाने का नाम है तारे. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके तारे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 6. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 6.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: ट्वेंटी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है.
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: गाना इंडी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची
17: नंबर 5.

0: अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है उड़ी उड़ी। दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुन के आपका दिल अनलॉक हो जाता है। दे साउंड लाइक फ्रीडम। मन करता है कि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलूं, दोनों हाथ फैलाऊं और चिल्लाऊं, मजे करूं, नाचूं। They put you in a groove, they put you in a good mood. And there are some incredible independent songs. जैसे चाल में मस्ती ला देते हैं, जो हमारे दिल को अनलॉक कर देते हैं, which sound like freedom. And I'm going to talk about one such song. It's one of the most celebrated collabs of last 10 years. I'm talking about Divine and Raja Kumari ka City Slums. Run and tell your mommy. ये गाना 2017 में आया था एंड व्हाट अ वंडरफुल कोलिजन ऑफ टू वर्ड्स। एक तरफ राजा कुमारी, एलए बेस्ड पॉप सिंगर सॉन्ग राइटर, मीट्स मुंबई के अपने गली रैपर डिवाइन। आज इट साउंड्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, राइट? बिकॉज हम इस तरह के कोलैबोरेशंस देखते रहते हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन आर्टिस्ट के बीच में देखते हैं, बट दिस कोलैब इन 2017 मेंट सच अ बिग डील। राजा कुमारी कैलिफोर्निया बेस्ड, वो ऑलरेडी बहुत बड़े अमेरिकन आर्टिस्ट के लिए गाने लिख चुकी थी, उनके साथ कोलैबोरेट कर चुकी थी, एंड उनका तेज सरार English flow with Divine sounds incredible, like a beautiful cocktail in the song. Why I love listening to this song is that ye gana na humko humari identity se bahut close feel karwata hai. It makes you feel good about yourself. It makes you feel good about where you belong to. To apne radio ke volume bada lijiye. Raja Kumari and Divine ka gana, gaane ka naam hai City Slums. It's got an earworm hook and I'm sure you will love it. Playing right next for you on Gaana Indie Top 10, bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Run and

0: दिस इनक्रेडिबल म्यूजिक डुओ फ्रॉम कुरुक्षेत्र बंजारे का गाना, गाने का नाम है बरसात. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बरसात वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आते तो ज्यादा टाइम तो आप गाना सुन लेते हो, गाने का नाम भूल जाते हो और फिर मुझे मैसेज करते हो कि गाना नंबर 4 पे कौन सा गाना बोला था. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, आपके लिए जो गाने का नाम भूल जाते हो, लेट्स डू अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. गाना नंबर 10 पर दिस वीक वॉज संजू राठौड़ का बैंगल्स.

0: राघव कौशिक, रेखा भारद्वाज का दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: तेरे मेरे दरमिया।
0: उसके बाद गाना नंबर 8 पर नई नवेली एंट्री, कृष्णा धंधानियोली वाला का बूम शाकला का डेब्यूज ऑन गाना नंबर 8।
2: बूम शाकला का, अरे बंदूक शाकला का, चिल्ला रे बूम शाकला का, दिला दे बूम शाकला का।
0: हर्ष नसीदीप क्लेयर का साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
3: अखियां ने अखियां मिला ते सही, साडी सुने अपनी सना ते सही।
0: फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रांग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। This beautiful folk pop songs by Anish Sarkar Hruday, Udi Udi this week on Gana number 5. Banjare ka Bairan tha this week on Gana number
4: 4.
0: Double Whammy by Banjare, unhi ka gana Barsaat humne suna on Gana number 3.
4: Pyare isa milna nahi, kon mere jisa chahegi.
0: And the top two songs of the week, Badshah Sharvi Yadav Hiten ka gana, gaane ka naam hai Banger, 3 haftos se is countdown par barkarar, ye gana pichle hafte se ek nahi, do nahi, pura 3 position upar jump karke, Badshah ka Banger is this week on gana number 2. Uske baad the Numero Uno song of the week, pichle hafte se apni position par barkarar hai ye gana, tika hua hai 3 haftos se on gana number 1, 25 haftos se is countdown par barkarar, Mitta Rohr ki awaaz hone ki composition, गाने का नाम है शीशा, yet again on गाना नंबर 1। ये दोनों गाने back to back, banger on number 2, शीशा on number 1, only on गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, enjoy।

barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
9: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
10: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इम्प्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतंदा एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
4: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन। दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशर अमरंग एफ्रो बीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस, क्योंकि तो

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है कि आपको अच्छी तरह मालूम है।

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, पर इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18।

0: चिकन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम. आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं. आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए. जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था. जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के. आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है.
2: क्या तुझे पागल
3: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे.
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू. हम आपको देख के इतना मेरी बात है. चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो. हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी. मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया. आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार. आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ. चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं. रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एवे, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
9: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, the jano.
10: It's 2 a.m. Her fever is climbing, and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
11: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
10: Wait, they can see us on Sunday?
11: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
13: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है.
17: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
6: हमारा करियर भी ना कभी कभी फुल बॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में सेटअप, इंटरवल पे कंफ्यूजन और सेकंड हाफ में डिसाइड होता है कि हीरो कमबैक कैसे करेगा। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपके करियर की स्टोरी को भी एक स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ चाहिए, देन न्यू जर्सी मार्क द डेट September 27। शेरिटन एडिसन में आ रहे हैं 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, आपके करियर की स्टोरी को एक फ्रेश कमबैक देने के लिए, विद एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप डिजाइंड स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स हु आर रेडी टू रीथिंक व्हाट कम्स नेक्स्ट। एंड दे आर नॉट जस्ट कमिंग विद थियोरी, दे हैव ऑलरेडी वर्क विद 1500 प्लस मिड करियर प्रोफेशनल्स, हेल्पिंग देम एक्सेलरेट प्रमोशंस, गेट डबल प्रमोशंस, इम्प्रूव विजिबिलिटी, स्ट्रेंथन लीडरशिप प्रेजेंस, अट्रैक्ट बिगर अपॉर्चुनिटी एंड इवन गेट अप टू 50-180% सैलरी रेजेस। सो थिंक ऑफ दिस वर्कशॉप एज योर करियर का रीराइट रूम, वेर यू कैन रीवाइटलाइज योर करियर, रीपोजिशन योर वैल्यू एंड मूव फॉरवर्ड विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj, दैट्स playitfull.com/nj। तो फिर चाहे layoffs हो, AI हो, technology changes हो या younger colleagues faster move हो रहे हो, आपके करियर का पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj एंड मार्क द डेट September 27 एट शेरिटन एडिसन न्यू जर्सी। और म्यूजिक का पिक्चर भी अभी बाकी है मेरे दोस्त विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को पील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। डूड, जस्ट थिंक ऑफ सत्या एंड कंपनी एंड यू विल नो व्हाट आई मीन। लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म्ड गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ पाया था। He was looking towards the future with the soundtrack of एक विलन। ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है। This is my rewind track of the week। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं। Top 20 Rewind।

0: Kane ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
4: I am not going to bed with you ever again.
3: But why? What did I do?
4: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
3: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
4: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
3: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
4: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना. इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी.
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Only on Mirchi. It's hot.
18: Number 15.

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल क्लिम्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंडट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वाज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, इंटिमेट, हेडफोन्स वाला गाना।

प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है। ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जसलीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहाँ।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता वो स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मल नए नए कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं, हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कन्फ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9,
3: अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइट, मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ,

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार कमाल कर दिया आपने जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के सारी एल्बम आ गई है क्या फोटो खींचे यार दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है सबके फोटो अजीब से आए यार सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है क्या?
2: फोटो बहुत अच्छा है सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब मैं पागल हूँ आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार तूने किया क्या ये
1: किसी का
2: कपड़े गायब है एक आदमी का मैं खड़ा हूँ अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं
1: लेंस कोई लगाया नहीं
2: क्या कौन सा लेंस लगाया है एक तो बता ये बदमाशी करते हो कपड़े
1: गायब नहीं
2: नहीं नहीं मैं कल को
1: फोटो खींचे
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से मैंने शेरवानी पहन रखी थी शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: सर क्या बात चुन के बनाया है
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया मेरा बेटा खड़ा है कपड़े नहीं है बहू उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है वो खड़ा है जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम ऐसी कोई बात नहीं
2: यार इतना बुरा लग रहा है हर आदमी के प्लेट में हर आदमी के हाथ में प्लेट है कपड़े है भी
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे आप उसको सही करिए यार
1: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो जेमा
8: 13 सप्टेम्बर रविवार
7: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200 जय गुरुदेव।
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.
0: Sureen ke saath only on Mirchi it's hot
17: number 7
2: fun।

0: ये गाना आया था 2026 का, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2005 में। एक सिंगिंग रियलिटी शो में एक लड़का विनर बना था और दूसरा सिक्स्थ आया था। विनर का नाम था काजी तौकीर और सिक्स्थ प्लेस पर आया था अरिजीत सिंह। आज काजी बिग बॉस के घर में है और एक नई जनरेशन उन्हें फिर से प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत, आज हम उनका नाम उस लिस्ट में लेते हैं जहां प्लेबैक लेजेंड्स बैठे हुए हैं, रफी, किशोर, सानू, उदित, सोनू और अब अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा। जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, कभी ऐसे वो करता नहीं, यू नो दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग्स, बहुत सिंपल। स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, इट्स अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो 17 तब था वैसा ही आज भी।
2: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
0: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा। वो वक्त आ रहा है, लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता। एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना।
3: नंबर 5।

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। लेकिन इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में। और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक, और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था, और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिपसिंक नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है, और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज अ पिक ऑफ द वीक।
2: पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
9: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
13: Number 2.

नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली का किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी

0: कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीस करना है, मुझ में कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज एंड हाँ फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई यू नो लाइक हिम सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग जहाँ देयर कैरेक्टराइजेशन हो एंड देन थैंकफुली वी स्टंबल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स यू नो losing someone you love. So a very painful moments and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं. एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए. उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था. और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है, बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया. एंड इज़न्ट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज. फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है. नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज. दिस इज तेरा मेरा रिश्ता.
2: Number one.

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची .20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दे दिल की फीलिंग्स।
1: रेडियो मिर्ची के साथ 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।